न जाने तुमरा अंत उचेते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो ऐसो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे आय घर नौने दयावै ताए

0: जिन जन अपना प्रभु बुझाता, सो जन सर्व दुख का दाता, तिसके शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे, अवर श्याम सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवण जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक। सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसके संग सिख उदरे, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सिख की
1: करै प्रतपाल, सेवक गुर सदा दयाल, सिखे गुर दुरमत मल हिरै, गुर वचनी हर नामे उचरै, सतगुरु सिखे बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुरु सिखा नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी हे, सतगुर सिखा हलत पल सुवारै, नानक सतगुर सिखो जी अनाल समारै, गुर कै गृह सिवक जोरै, गुर की आज्ञा मन मै सहै, आपस कौ कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै, मन बेचै सतगुर के पास, तिस सेवक के कार्ज रास, सेवा करत हुए ने कामी, तिस कौ होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस विश्वे गुर का मन मानै, सो सेवक परमेश्वर की गत जानै, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर का बल जाओ, सर्व निदान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म जन जन मैं पार ब्रह्म, एक आप नहीं गच परम, सस्यान पुलया न जाइए, नानक ऐसा गुरु बड़भागी पाइय, सफल दर्शन पेखत पुनीत, पर सचरण गत निर्मल रीत, भेट संग राम गुण रवै, पार ब्रह्म की दरगे गवै, सुनकर बचन करने आगाने, मन संतोखे आत्म पतियाने, बुरा गुरु कहो जा का मंत्र, अमृत दृश्य वेखे हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावै तिस लय मिलाए, जेवा एक उस्त अनेक सतपुरख पूर्ण विवेक, काहु बोलना पहुँचत प्राणी, आगाम गोचर प्रभ निर्वाणी, निराहर निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किन न पाई, अनक भक्त बंधन नित कराए, चरण कमल हृदय सिमरै, सद बलिहारी सतगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, हर रस पावै जन कोय, अमृत पीवे अमर सो होए, उस पुरख का ना ही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणता, से आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक का दे, मोह माया के संग न ले, मन में रखे हर हर एक, अंधकार दीपक पुरगा से, नानक परमो दुख तहते ना से, तप्त माया ठाठ वरताई, अंध पिया दुख नाठे पाई, जन मन के मिटे अंधे से, साधु के पूर्ण उपदेश पा चुका, निरपा हो बसे, सकल व्याध मन देखे न से, जिसका साधन कृपा तारी, साध संग जप नाम मुरारी, तित भाई चूके ब्रह्म गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन, निर्गुण अवसर गुण पियो, ही कला तार जिन सगली मोही, अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिंदु जाना ही कोय, सर निरंतर एको सोए, ओत पोत रव्या रूप रंग, पय प्रगा साध के संग, रच रचना अपनी कल तारी, अनक बार नानक बलिहारी, श्लोक साथ न चले बिन भजन,

फिर जा बृहस्पति। जब कार्य कठिन दिशे तब आप हम तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समात तब बैर विरोध के संक मत। जब इसका वर्ण चैन न जब तब हर शोक का किसे व्याप्त, जब आपने आप या पर ब्रह्म तब मोह कहाँ के शोभित परम। आपन खेले आप भरती जाना न करने हर न दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त का किसको गनी। जब एक कह हर अगम पर तब नरक सुरु का कौन उतार, जब निर्गुण प्रभ सहित सुबह तब शिव शक्त कहो हो कित ठाए। जब आप अपनी ज्योत रहे तब कवन डर कवन कत डरे, अपन चलते आप करने हर नानक ठाकुर गामे अपार। अविनाशी सुखे अपने आसन तय जन मरण कहो कहाँ विनाशन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत गोचर प्रभ एक तब चित्रगुप्त किच पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन गोचर गा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपने आप ये चर्जा नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैल कहो क्या क्यों तोता, जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कुमान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तय चल चित्र लक्त कहो किस, जय जो स्वरूप ही जो संग समावे तय किसे भूख कवन तृप्तावे। कर्ण करावन करने हार नानक करते का ना सुमार, जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कलाया पे प्रवीण तय वेद के देव कहाँ को चैन, जब अपने आप आपुर तारे तो सगने अब सगन कहाँ बेचारे। जय अपने ऊँचे अपने अपने रहते कौन ठाकुर कौन कहिए चेहरा, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप। जय चल चेद भेद समाया हुआ किसे व्याप्त माया, आप उसको आपे देश ते गुण का ना ही प्रवेश। जय कह एक भगवंता ते कौन चिंत किस लागे चिंता, जय अपने आप बतिया रहते कौन कथा कौन सुनने हार भव बेअंत उसते ऊँचा नानक आप उसको आपे पहुँचा। जय आप रचियो प्रपंच कार ते गुण में किनो विस्तार, पाप हम ते पई कहावत को नर को सुर्ग वंशावते। आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार, दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की उपख्या ने अपन खेल आप कर देखे, खेल संकोच तो नानक एक है। जय अवगत भगत आप जय पसरा पासार संत प्रताप, दू पाका पे धनी उनकी शोभा उन बनी। आप एक कौत करे आनंद चो जे आप रस भोगन निर्जोग, जिस पावे तुसे अपन ना लावे जिस पावे तिस खेल खिलावे। बेसुमारे था गणत तो जो बुलावो त्यों नानक दास बोले श्लोक जी।

सुते अपराध करत है जीते जननी चेत न राखस तेते रामैया हम बारिक तेरा काहे ना खंडस अवगुण मेरा रामैया हम बारिक तेरा काहे ना खंडस अवगुण मेरा तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहिले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले सो कहो टल गुर सेवीऐ अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसियाए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटीऐ तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटीऐ सज्जन सच्चा पातशाह सिरसा हांदै साहो जिस पास बैठिया सोहीऐ सबना दा वेसाहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सोरठ महला तीजा

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु

वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह

0: वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु
1: वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु
0: वाहगुरु

0: गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु
1: वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु
0: वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

तिरंत न पारावरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै है सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सृजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दाता रा

चुन चुन सत्र हमारी मारिया है, आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जू करियो रक्षा, राख ले हो मुहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन

नमस्कार तिसहि को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधुन के सुखी एक एक की पीर पछानै कट कट की पट पट की जानै जाबूद करख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आ करख करत हूँ कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै आप आपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंब ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कृपा हनिन मानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कैद सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेव

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभ्राता, किल्बिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता, श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन वांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई, अड़िल सुनै गुंग जो जाहे सुरस न पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहै, हो जो या की एक बार चौपाई को कहै, चौपाई

ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपाल हम बारिक तुमरे तारे सो कह टल गुर सेविय अहनिस सहन सुभाय दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरसा हांद साहो जिस पास बैठिया सोही है सब नांदा विसाहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

0: रहे, सात के संग मनोहर है,
1: सात के संग न खतूं दावे,
0: सात सिंह सिख मन पावे,
1: सात के संग माया ते पीन,
0: सात सिंह नानक प्रभ सुपर सन,
1: सात संग दुश्मन समी,
0: साधु के संग महापुरीत,
1: सात संग सुनाई बह,
0: सात के संग ना पीका बह,
1: सात के संग नाई को मंदा,
0: सात संग जाने परमानंदा,
1: सात के संग नाई होता,
0: सात के संग तजे सब
1: आपे जाने साध बुझाई,
0: नानक सात प्रभु बने,
1: सात के संग न कबूतावे,
0: सात के संग सदा सुख पावे,
1: सात संग भगस बस्त गोचर ले,
0: साधु के संग अजर सहे,
1: सात के संग बसे तान उच्चे,
0: साधु के संग मैल पहुंचे,
1: सात के संग दृढ़ सब धर्म,
0: सात के संग केवल पाप राम,
1: सात के संग पाए निदान,
0: साधु के गुणगान,
1: सात के संग सब फूल उधारे,
0: सात संग साजन भी कुटुंब निस्तारे,
1: साधु के संग सो धन पाए,
0: जिस तन ते सब को बरसावे,
1: सात संग धर्म राय करे सेवा,
0: सात के संग सो पास उदेवा,
1: साधु के संग पाप लायन,
0: सात संग अमृत गुण गायन,
1: सात के संग श्रम थान गम,
0: नानक सात के संग सफल जना,
1: सात के संग नहीं दुष्काल,
0: दर्शन पेट मोत निहाल,
1: सात के संग कलुक कधरे,
0: सात के संग नत पर हरे,
1: सात के संग यहां सेला,
0: सात संग विचरत मेला,
1: जो इच्छे सोई फल पावे,
0: सात के संग
1: नानक सात के संग सुनियो हर नाम,
0: सात संग हर के गुण गाओ,
1: सात के संग न मन ते बिसरे,
0: सात संग सर पर निस्तरे,
1: सात के संग लगे प्रमिठा,
0: साधु के संग कट
1: सात संग पया आज्ञाकारी,
0: सात संगत पई हमारी,
1: सात के संग मिटे सब रोग,

0: परम ज्ञानी सदा निर्लेप
1: जैसे जल में कमल लेप
0: परम ज्ञानी सदा निर्दोष
1: जैसे सुर सर्प को सोग
0: परम ज्ञानी के दृष्ट समान
1: जैसे राज मुकुट लागे तुर्पवान
0: परम ज्ञानी के तीरज एक
1: जो वस्ता को खोदे को चंद्र लेप
0: परम ज्ञानी का एह गुना
1: जो पाप का सह स्वभाव
0: परम ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
1: जैसे मैल लागे जला
0: परम ज्ञानी के मन होए प्रकाश
1: जैसे तरुण पर आकाश
0: परम ज्ञानी के मित्र सत्र समान
1: परम ज्ञानी के नाई अभिमान
0: परम ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा
1: मन अपने है सबते नीचा
0: परम ज्ञानी से जन पाए
1: नारद प्राप्त करे
0: परम ज्ञानी सगल की रीना
1: आत्म रस परम ज्ञानी चीना
0: परम ज्ञानी की सब ऊपर मया
1: परम ज्ञानी के पुष्परा लुटिया
0: परम ज्ञानी सदा समदर्शी
1: परम ज्ञानी की दिशा अमृत बरसी
0: परम ज्ञानी बंधन ते मुक्त
1: परम ज्ञानी की निर्मल जुक्ता
0: परम ज्ञानी का भोजन ज्ञान
1: नानक परम ज्ञानी का परम ध्यान
0: परम ज्ञानी एक ऊपर आस
1: परम ज्ञानी का नहीं विनाश
0: परम ज्ञानी के गरीबी स्वाहा
1: परम ज्ञानी परम पुकार
0: परम ज्ञानी के नाही तंदा
1: परम ज्ञानी ले तावत बंदा
0: परम ज्ञानी के होए सुफला
1: परम ज्ञानी सुफल फला
0: परम ज्ञानी संग सगल उदार
1: नानक परम ज्ञानी के
0: परम ज्ञानी के एक रंग
1: परम ज्ञानी के वसे प्रसंग
0: परम ज्ञानी के नाम आधार
1: परम ज्ञानी के नाम परवार
0: परम ज्ञानी सदा सद जागत
1: परम ज्ञानी अनुभव जागत
0: परम ज्ञानी के मन परमानंद
1: परम ज्ञानी के का सदानंद
0: परम ज्ञानी सुख सहज निवास
1: नानक परम ज्ञानी का नहीं विनाश
0: परम ज्ञानी ब्रह्म का बेतर
1: परम ज्ञानी एक संवेता
0: परम ज्ञानी के होए अचिंत
1: परम ज्ञानी का निर्मल मंत
0: परम ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
1: परम ज्ञानी का वट प्रताप
0: परम ज्ञानी का दर्श वट भागी पाइये
1: परम ज्ञानी को बल बल जाइए
0: परम ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: नानक परम ज्ञानी आप परमेश्वर
0: परम ज्ञानी की कीमत नाही
1: परम ज्ञानी के सगल मन पाए
0: परम ज्ञानी का कौन जाने भेद
1: परम ज्ञानी को सदा आदेश
0: परम ज्ञानी का कथ्या न जाए अधाकर
1: परम ज्ञानी सर्व का ठाकुर
0: परम ज्ञानी की मित कौन बखाने
1: परम ज्ञानी की गत परम ज्ञानी जाने
0: परम ज्ञानी का अंत न पार
1: नानक परम ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: परम ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता
1: परम ज्ञानी सजीव निर्माता
0: परम ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
1: परम ज्ञानी पूर्ण
0: परम ज्ञानी अनाथ का नाथ

मारते हो ही भिन्न इस वस्तु का निर्मल धर्म केवल भगत की तन सम्राज्य सब उपत हो कृपाल नानक को वैष्णो परम गत पावे सकल त्यागे दुष्का संग कर पूजे सकल पाराम इस भगवत की मत उत्तम हो मानता नर में भीषण प्रीत नानक ऐसा भगवत ही भगवंत को पावे राम नामा तन में सोते उस पंडित के उपदेश जग जीवे सो पंडित के जो नावे सुख मैं जाने सूल नानक उस पंडित को सदा देश चौवन नाम है जपे को नाम सा सत पावे जन कोई उस प्रेत मुगत पात्र को तारे कल्याण रूप मंगल गुण गाम नानक इस मिले जिसके क्या तुर करम जिसका नाम सतराम दास दास सत्तर पाई तिन पाया सो दास दर के परवान इस दास को सब सो जी परे ऐसी जुगत नानक रामदास जीवन मुगत सो उठावे सदा नरते नहीं प्योग तैसा मृत तैसी भी काटी तैसा रंग तैसा राजान नानक को भूल गई ये जीवन मुक्त जीत कर आगे तैसा फिर नाम प्रभावे सोई

0: निवासी
1: कई कोट वन प्रमेय उदासी
0: कई कोट वेद के सोते
1: कई कोट पीसर होते
0: कई कोट आत्म ध्यान धारे
1: कई कोट का विचारे
0: कई कोट नवतन नाम ध्यावे कई कोट पे अभिमानी
1: कई कोट अज्ञानी
0: कई कोट कृपन कठोर
1: कई कोट अभिघात अंबिकोर
0: कई कोट पर दर्भ को हिरे
1: कई कोट पर दूर न करे
0: कई कोट माया श्रम माहे
1: कई कोट पर देश परमाए
0: जित जित लावो तित तित लगना
1: नानक करते की जाने करता रचना
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी
1: कई कोट राजे रस भोगी
0: कई कोट पंखी सर्प उपाय
1: कई कोट पात्र वेद निप जाए
0: कई कोट पवन पानी बैसंतर
1: कई कोट देश भूमंडल
0: कई कोट ससियर सूर निक्षेत्र
1: कई कोट देवताना इंद्र से छत्र
0: सकल समग्री अपना सूत धारा
1: नानक जिस भावे तिस सिर सारे
0: कई कोट राजस तामस सातक
1: कई कोट वेद प्राण सुमत शास्त्र
0: कई कोट किए रतन समुद्र
1: कई कोट नाना प्रकार चंद
0: कई कोट किए चिर जीवे
1: कई कोट गिरी मेर सुवरन दीवे
0: कई कोट जखे किन्ने पंच पिसाच
1: कई कोट भूत प्रेत सूकर मिगराच
0: सब ते नेरा सबू ते दूर
1: नानक आप लिप्त रहा पर पूर
0: कई कोट पाताल के वासी
1: कई कोट नरसुर निवासी
0: कई कोट जन्म जीवे मरे
1: कई कोट पो जो नी फिरे
0: कई कोट बैठत ही खाए
1: कई कोट काले तक पाए
0: कई कोट किए तनवंत
1: कई कोट माया वैचित
0: जय जय भाणा तह तह राखे
1: नानक सब किछ प्रभु के हाथे
0: कई कोट पे बैरागी
1: राम नाम सिद्धि बिलागी
0: कई कोट प्रभु कहु खुजंते
1: आत्मे पार ब्रह्म लहंते
0: कई कोट दर्शन प्रभ प्यास
1: किनको मिल्यो प्रभु विनाश
0: कई कोट मागे सत्संग
1: पार ब्रह्म तिलागा रंग
0: जिनको होए आप सुप्रसन्न
1: नानक तेजन सदा तन तन
0: कई कोट खानी अर खंड
1: कई कोट आकाश ब्रह्मांड
0: कई कोट होए अवतार
1: कई जगत की नो विस्तार
0: कई बार पसरियो पासार
1: सदा सदाई के कंकार
0: कई कोट कीने बहुजात
1: प्रभे होए ब्रह्माय सुमात
0: ताका अंत न जाना कोई
1: आपे अपना लुप्त प्रभ सोए
0: कई कोट पार ब्रह्म के दास
1: होता तत्व प्रकाश
0: कई कोट तत्व के बेते
1: सदा निहारे को मित्रे
0: कई कोट नाम रस पीवे
1: अमर पैसा सदी जीवे
0: कई कोट नाम गुण गावे
1: आत्म रस

सबके दुखन जब तेरी छुटे, सबके दुखन अर्पे पाए, सबके दुखन सोपा दे हीन, सबके दुखन खान कष्ट होए, नानक सत्संग निंदक नहीं करे, संतन के दुखन काम जो लवे, संत के दुखन त्रिगण जोर किरमाए, संत के दुखन सब को चले, संत के दुखन नीच निचाए, नानक संत पावे का होगी गत पाए, संत का निंदक किन के करना पाए, संत का निंदक पर में सरमारा, संत का निंदक दुख्या दीन, संत के निंदक को सदा विजोग, नानक सर पावे ता उसका भी होए भोग, संत का दोखी किसी का नहीं मीत, संत के दोखी को सब त्यागे, संत का दोखी सदा पिकारी, संत की दुखना सुख के डरे, नानक सर पावे ता ले मिलाए, संत का दोखी के कार न पहुंचे, संत का दोखी उजड़ पाइए, जो सांस बिना में तकील होता, आपन बीजा पेरी खाए, नानक सर पावे ता ले उपार, जो जल भी हूँ मछली तड़फड़ाए, भूखा नहीं राजे, जो भावक इंदर नहीं तापे, जो बाढ़ दिल के तुम्हाई दीला, संत का दुख सब क्या कहते, नानक जो तिस पावे सोई तिया, संत के दोखी को दर कह मिले सजाए, संत का दोखी न मरे रे जवाई, संत का दोखी उठ चले निराशा, जैसा पावे तैसा कोई होए,

मन के कृष्णा ही हाथ, इसका नाम रखत प्रोय, नानक विघ्न लागे कोई, कर मन मेरे सत व्यवहार, सदा सुहिला कर ले जियो, साथ सब से सब संग, उनके पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म हर करके नानक पूजन पता, सदा सहर के गुणगाए, शेष तन मंद कभी संसार, सदा सदाचार नो देश की, एक उत्कीयो सो जी जाने, नानक तिने निरंजन जानिया, किसकी जानो तिस ना बुझे, सर्व रोग त्यो हर जन रहत, रहस्य में सोई निर्वाण, किसकी कटिए जब की पासा, नानक किसी न लागे दुख, सो सत सुहिला नहीं बुलाए,

0: अरब साथ को अपना जियो,
1: साथ की दूर करो स्नान,
0: साथ ऊपर चाहिए कुर्बान,
1: साथ सेवा वन पागी पाए,
0: साथ संगत कीर्तन गाइए,
1: अनिल बिगनते साधु राखे,
0: हर गुण पाए अमृत रस चाखे,
1: ओट कई संते दराया,
0: सर्व सुखना नृत्य पाया,
1: मृत को दीवालन हार,
0: भूखे को देवत कतार,
1: सर्व निधान जाकी दृष्टि माए,
0: पूर्व लिखे का लेना पाए,
1: सब किस किसका करने जो,
0: जिसमें दूसर हुआ न होग,
1: जब जन सदा सदा दिन रहनी,
0: सब ते उचित बल हे करनी,
1: कर कृपा जिसको नाम दिया,
0: नान सोचन निर्मल किया,
1: जाके मन जाके मन लागा गुरु की,
0: जाके मन गुरु की प्रतीत,
2: जाके मन हाकत चीर,
1: भगत भगत सुनिए ते लोए,
0: जाके हृदय एक होए,
1: सच करनी सता की रहत,
0: सच हृदय सत मुख कहत,
1: साची दिशा चाका,
0: सच

0: मीत विसारो,
1: चरण कमल मीत मैं उतारो,
0: वरण कारण सो प्रभ समरथ,
1: दीर्घ गौ ना भरवंत,
0: एतन संचो हो वे भगवंत,
1: संत नाका निर्मल मंत,
0: एक आस राखो मन माए,
1: सर्व रूप ना रख जाए,
0: इस तन को चार कुंड उठतावे,
1: सो तन हर से बाते पावे,
0: जिस सुख को नित बाचो मूत,
1: जिस
0: सुख को नित बाचो मीत,
1: सो सुख साधु संग प्रीत,
0: जिस शोभा को करो भली करनी,
1: सा शोभा पद हर की सरनी,
0: अनेक उपावी रोग न जाए,
1: रोग मिटे हर अवखत लाए,
0: शरण निदान मैं हर नाम निदान,
1: जप नानक दर के परवान,
0: मन प्रबोध हर के नाए,
1: जय जिस दावत आवे काए,
0: काको बिगन न लागे कोए,
1: जाके हृदय बसे हर सोए,
0: कल ताती ठाडा हर नाओ,
1: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
0: ओ बिन से पूर्ण होए आस,
1: भगत पाए आत्म प्रकाश,
0: जिस कर जाए बसे अविनाशी,
1: और नानक काटी जम फांसी,
0: तत विचार कहे जन साचा,
1: जन्म मरे सो काचो काचा,
0: आवागमन मिटे प्रभ से,
1: आप्या शरण गुरुदेव,
0: हे और तन जन्म का होए उदार,
1: हर सिमरन प्राण उदार,
0: अनेक भावना छुटन हारे,
1: सिमर शास्त्र वेद विचारे,
0: हर की भगत करो मन लाए,
1: मन बचन नान फल पाए,
0: करना चालीस तेरे तना,
1: तू क्या लपावे मूर्ख मना,
0: सूत मीत कुटुंब अरबिंता,
1: इते कहूं तुम कौन सनाता,
0: राज रंग माया विस्तार,
1: इते कहूं तुम कौन सुतार,
0: अस हस्ती रथ असवारी,
1: झूठा डाक झूठा सारी,
0: जिन दिए तिस बूझे ना बिगाना,
1: नाम साना रख पछताना,
0: खुद की मतु ले इयाने,
1: भगत बिना बोल डूबे स्याने,
0: हर की भगत करो मन मीत,
1: निर्मल होए तुम्हारो चीत,
0: चरण कमल रखो मन माए,
1: जनम जनम के किल बिक जाए,
0: आप जपो अवरा ना जपावो,
1: सुनत कहत रहत

ते सुखोए, सतगुरु ते निर्मल मत लई, सेवक इनो सदा निहाल, जन्म मरण दुख कम गया, रावरे आस

para Pai, Pai, जाके मन बसया दिल कर, अंदिल पूजे गुर के पैर, नानक हर प्रभाव पे मिले, गुण का ओपर परमानंद, दुर्लभ देखा करो उदार, प्राण तरण का एक स्वाव, मिटे ज्ञान बिन से अंधेरा, मन इच्छे नान फल पाओ, राम नाम अंतर उतार, जिस पर बसे थी साच प्रीख्या, दुख दर्मा ते पहुंचाए, दर्गे निमे खेप तुम्हारी, धन भवन ना आवे जाए, ऊपरे राखन हार जाए, प्रभ के पाते प्राण ही छुटे, नाम जपत मन हो वह सुख, तिसन को कोई न पहुंचन हार, नानक ताके कार्य पूरा, दर्शन पेकर उदर शिष्ट, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, अंतर जामी पुर प्रदान, ताके निज

0: निरंजना के इंद्रिय सब तरम संत जना सुने सुवचन सर्वव्यापी राम संरचन
1: जिन जाता तिसकिए रहत
0: सत वचन साधु सब कहत
1: जो जो होए सोई सुख माने
0: कर्ण रावण हार पाप जाने
1: अंतर बसे बाहर व्योहि
0: आनंद दर्शन देख समोहि
1: आप सत किया सब सत
0: तिस प्राप्त सगली उत्पात
1: तिस पावेता करे विस्तार
0: तिस पावेता एक अहंकार
1: अनि कला कलखी न जाए
0: तिस लय मिलाए
1: भवन निकट कवन कहिए दो
0: आपे आप भरपूर
1: अंतर जिस अंतर्गत जिस आप जनाए
0: नानक जिसन आप बुझाए
1: सर्व भूत आवर्तन हारा
0: सर्व नैना पेखन हारा
1: सगल सामग्री जा का तना
0: आपन जस आप ही सुना
1: आवन जान की आवन जानी खेल बनाया
0: आज्ञाकारी की निभाया
1: सबके मद अल्पत रहे
0: जो कुछ कहना सो आपे कहे
1: आज्ञा आवे आज्ञा जाए
0: नानक जप आवे तो लय समाए
1: इसके होए सुना ही बुरा
0: बुरा कहू कि ने कुछ करा
1: आप भला कर तू अपनी
2: आपे जाने अपने जीवे
1: आप सार धारी सब सार
0: ओत ओत आपन संग्राज
1: की गदमित कहीं न जाए
0: दूसर होए तो सो जी पाए
1: जिसका किया सब परवान
0: गुर प्रसाद नानक की जान
1: जो जाने की सदा सुख होए
0: आ मिलाए लय प्रभ सोए
1: ओ धनवंत कुलवंत पदवंत
0: जीवन मुकत जिस हृदय भगवंत

0: आवत होत उतार,
1: आप करे लोके निस्तार,
0: सफल जीवन सफलता का संग,
1: जाके मल्ला का हर रंग,
0: जय जय शब्द अनाहद वाज,
1: सुनत करे प्रभु का जय,
0: प्रगटे गोपाल महात के माता,
1: नारद उतरे तिनके साथे,
0: शरण जोग सुन सरनी आए, मिट गए पैर पए सब रेन, सुपर सन पए गुरुदेव, आल जंजाल बिगाड़ते रहते, कर प्रसाद दया प्रभु तारा, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम, सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, सब ते ऊंच पाए अस्थान, हर तन खाट चले जन सोए, खेम सांत रिद नवदिद, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, चार पदार्थ कमल प्रगा,

कल जुग सुनत समाज सब जिस केरे कुन दुख ना सुखदायक सूरो जो तरत ध्यान बसत तहनेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाए परे रे जो हर बुध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुरु कर मन मेरे गुरु मुख देख गुरु सुख पायो कुती जो प्यास पियुस पिवन की बंछत सिद्ध को बिद मिलायो पूरन पौ मन ठौर बसो रस बासन से जो दो दिस्तायो गोविंद बाल गोविंद पुरी सम जलन तीर विपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को।

0: भगवती शांत प्रसाद कथते कि आज जदेसे कि आप इज पैसे
1: गंज करने के आपज पर में
0: कि आप इज लोके के आदित सोके
1: आप दूत बनने के भी बूत करने
0: राजन प्रभा है के तरमन तु जा
1: या शोक बनने के सर्वा पर ने
0: जतन कृति है के छत्रन छत्री है।

0: सहन सहे
1: कारण को निंदा के रोजी
0: रहीम है के कर्मं करीम है
1: के सर्वं करीम है के सर्वं धनी है
0: सर्वत्र मान्य के सर्वत्र धान्य
1: के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण
0: है सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश
1: है सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र सज है
0: सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है
1: सर्वत्र जाओ के सर्वत्र पाओ
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
1: सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है
0: सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता
1: सर्वत्र पेकी के सर्वत्र पेकी
0: सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य है
1: सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख
0: है सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है
1: सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
0: सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य
1: है सर्वत्र जापे के सर्वत्र ताप
0: है सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है
1: सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र
0: है सर्वं कलीम है के परमं फहीम है
1: अल्लाह में के साहिब के नाम

0: छिज है छूत है
1: धड़कन पर नाजर पेट्रोल प्रवाह है
0: निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है
1: विभुक्त स्वरूप है प्रभुगत अनुरूप है
0: निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है
1: अनुगत स्वरूप है प्रभुगत।

0: अनंत स्वरूपे अपंगन में भूते परमातंग परमाते सदा सर्व साथे
1: अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिका में
0: स्वरूपे सर्वंगी अनुपे।

0: भगवती चंद प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है,
1: हमेशा सलाम है समस्त कलाम है,
0: कि साहिब दिमाग है कि उस्तल चराग है।

चंद मस्तुल परनामे समस्तुल परनासे निकामन विभूते समस्तुल स्वरूपे सदा सच्चिदानंद सतरंग परनासे अजायब विभूते गजायब गनी में।

0: गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे श्री पर श्री भगवान कृपा बिंदियाल जहां निदान चलेंगे
1: अपार बड़े बड़े आर बिचारे सार की तार बजैया
0: और देश मलिंद मवासन मत गजान के मान मलैया
1: गड़ान के तोड़न आर सो बात नहीं चक चार लवैया
0: साहिब श्री सबको सरनाए

0: सात समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सब अब लोग छपेंगे
1: मानव इंद्र के जिंदन नरातप जोन त्रिलोक को राज करेंगे
0: कोट स्नान के जादिक दान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे
1: ब्रह्मेश्वर विजन सजी पदांत फजे जम फास भरेंगे
0: जय नर श्री पत के प्रसन्न भगत नर फिर ना दे तरेंगे
1: दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो भगत ध्यान लगायो
0: नाथ फ्रियो लिए सा

0: काल का त्रास नोरी है।
1: पूजो सदा हमारे पच्छा श्री सुजो करो रचा। दीन बंधु दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता।

किल भिक सकल दे को हरता दुष्टो क्यों को छे करता मन बाचत फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई अड़िल।

राम रही पुराल पुराल ने कहे मत एक दमानियो श्री अस्पाल कृपा तुमरी कर मैं न क्यों सब तो

सब तेरी रा मात पिता हम बारिक तुमरी किरपा में सुख कनेर कोई न जान तुमरा अंत उचे ते जा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो ऐसो